दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: दिवाली ले वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स देखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदों तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा ते उपलब्ध है, अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जा ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
5: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
3: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857048 ते।
5: सिंक स्मैश रिपेयर,
3: 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
7: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
8: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सब का अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, वन ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com.
1: टेंशन निधि टेंशन
2: की हुआ
1: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04-10-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तो आडे नाल।
3: In 2006, 1 in 4 young people were bullied. In 2026, 1 in 4 young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
4: Diwali, Roshni ka Tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand. Rivazon ke rang, khanon ka swaad aur Diwali ka ehsaas rakhein barqarar. अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: थापी, मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
4: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
5: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
6: किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

जी हाँ भाइयों और बहनों, बिना का गीत माला में आप सभी का स्वागत है। ये पहला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं, धीरे धीरे चल, फिल्म है लव मैरिज। इस गीत को बोल दिए हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और फिल्म में काम किया है देवानंद, माला सेना, अभी भट्टाचार्य ने। साल 1959 में आई इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: शुरुआत होती एक साल पहले ही होगी सी 1949 से, और फिल्म आई सी की बरसात, राजकपूर नरगिस जी दी, याद है
1: बरसात दूजी बरसात
0: में, बरसात में तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम,
1: आज दिन
0: ज्यादा होगा ना,
1: आज तो लगता है पुराने गाले ही
0: फिर चाहे सी, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का,
1: वो वाला भी है, ये तो पता हाँ।
0: फिर जिया बेकरार है तेरा इंतजार है, आजा रे बालवा मेरा,
1: वो वाला भी है, सही है सही
0: है। फिर पतली कमर, जिंदगी में हरदम रोना, मतलब बड़े सारे गाने जड़े इस फिल्म दे सीगे बरसात दे, और बरसात ने उन्होंने रातों रात हिट करता सीगा, ओवरनाइट स्टार बनाता
1: सारी रात, कल भी बरसात पैदी रही सारी।

0: Great finance offers available across Geely EX5, Stara EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsgrade.com.au. Credit criteria, TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.au।

0: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300 151 616, quicksignage.com.au।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aa gayi.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Oh, ye border chal rahi hai?
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Ji tusi bimar ho ta AI kul nahi, doctor kul janne ho. Fir kanuni masle vich faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
8: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2 Fold Lending।

0: आहो जी आहो।
1: अक्षर जूलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स सैंडविच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आई एम ई एडवाइजर।
2: चल दोस्तों मैं हां थोड़ा अपना प्रीतपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM।

जरा सा बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
3: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio.

दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की

0: रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी।

0: विच इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो
2: जो हुक्म मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
3: हेलो मैं हूं सनी देओल और आप सुन रहे हां जी 16748

0: थापी।
1: मैं सोचती थी कि अपन कबड्डी की टीम बना ली।
2: तू पलवान बनना, पलवान जम।
0: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वड़िंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारिया नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे आपणिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध, नियम और शर्तें लागू।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
4: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
5: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
6: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप वडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होन जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16 2026 नू।

0: भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कर जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर, फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 पे या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au पे। सोना चाहिदा,
2: परोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
3: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध, नियम और शर्तें लागू।
4: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: विक्टोरिया दे परिवार विक्टोरियन एनर्जी कंपेयर वर्थ के अपने लिए सब तो सस्ता एनर्जी ऑफर लब सकते हैं। औसतन जिन्ना लोका ने इस साल विक्टोरियन एनर्जी कंपेयर वर्तिया उन्होंने सब तो घट कीमत वाले ऑफर नाल अपना प्लान बदल के $230 बचाए हैं। सर्च करो विक्टोरियन एनर्जी कंपेयर जा compare.energy.vic.gov.au ते जाओ। अपनी भाषा विच मदद लई 1314-50 ते ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग सर्विसेज नू कॉल करो। विक्टोरियन गवर्नमेंट मेलबर्न वल्लो अधिकारित।
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com.
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की हुआ
3: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04-10-500-500
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल।

0: Great finance offers available across Geely EX5, Starre EMI and Geely EX2 models. Ends 31st October. Visit 421 Buckley Street or online at geelyfootsgrade.com.au. Credit criteria TNC apply. Finance provided by Allied Retail Finance Private Limited. Trading as Geely Finance. LMCA 7503.
1: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੇਅਰਸ ਮੈਲਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰਸ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1-800-642-273 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਾਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੋਜੋ। ਇਹ ਹੈ MICARE।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: थापी,
5: मैं सोचती सी के अपन कबड्डी दी टीम बना ली।
6: तू पहलवान बनना, पहलवान जम।
7: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जयदीप विडिंग, नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
8: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिकृत।
9: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
10: ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
11: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। हम थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
12: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
11: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
13: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
4: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
5: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया?
5: इत्थे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो VY इमीग्रेशन नु, जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
3: VY Immigration and Education Consultant,
5: हर कदम तुहाडे नाल।
6: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: एस करके जल्दी करो।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
2: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: मारूं ता एआई कुल नहीं डॉक्टर कुल जाने हूं। फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
2: दिवाली रोशनी का त्योहार तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ
0: किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन थोड़े घर बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
3: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
4: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
5: Desh bhakti to yaad aa gayi.
6: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
3: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
7: Aur ye border chal rahi hai?
3: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.

रेडियो हांजी 1674 ते थोड़ा स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। उम्मीद करते हैं थोड़ा अज्ज का दिन सोहना सोहना शुरू हो गया होएगा, कम्मां कारां वाल चल पे होंगे या फिर बच्चे तैयार श्यार होना शुरू हो गए होंगे जी। होना चाहिए भी है क्योंकि बस अज का शुक्रवार, फिर दो दिन थोड़ी जी रेस्ट, थोड़ा जहा आप की कह सकते हैं रिलैक्सेशन। पर कल दी गल्लां कल ते जी, अज दा शो आप शुरू कर दें। मेरा नाम है कृष्णा ते अज दे शुक्रवार दे हांजी मेलबर्न दे शो दा थोड़ा सारथी। उम्मीद करते हैं कि तुसी इस तो पहला चलते प्रोग्राम्स नू इंजॉय किया होएगा, सुनिया होएगा। ते हुन आपां हर वारी जिस तरह सिलसिलेवार अगे वधदे हैं, अज भी आओ उस परमात्मा दा शुक्र करिए जिसने खूबसूरत जिंदगी दित्ती सुंदर शब्द कीर्तन के नाल।

श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में आश्चर्य साच रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहे आप भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नाय लै प्रचित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी लाया बिंद्रा बन में रंग किया। कल मैं वेद अथर बन हुआ नाउ खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुर ठाणी अमल किया। चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए कौड़ी।

मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉन स्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा davidavis.com.in।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ आस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616।
2: नीरू बाजवा, सनी सिंह, सुखविंदर चाहल, हशनीन चौहान ते होर बहुत सारे सितारियां नाल सजी फिल्म रिलीज होने जा रही है थोड़ी नेड़ली सिनेमा घरां दे विच अक्टूबर 16, 2026 नू।
3: मेरी गोली फिर तो मुक हो गई है, मैनू नवी दवाई दी पर्ची चाहिदी है।
4: कि तुहानू पता है हुण इह केमिस्ट तों वी मिल जांदी है।
3: ओह, मैनू यूटीआई हो रही महसूस हो रही है, मैनू जल्दी तो जल्दी इस लई कुछ देना पवेगा।
4: इसनू केमिस्ट तों लओ। हुण केमिस्ट वी जीपी कोल जाण दी लोड़ तों बिना पहलां नालों वध बीमारियां दा इलाज कर रहे हन। यूटीआई तों लै के जनेऊ रोग दे इलाज अते होर बहुत कुछ तक। समां बचाओ अते इसनू केमिस्ट तों ही लै लो। भाग लैण वाले केमिस्टां ते उपलब्ध इलाजां नूं लब्भण लई chemistcarenow.wic.gov.au ते जाओ। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा जारी।
5: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें 4 चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।

0: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम ना उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई ग्रेड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं। और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा, विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा अधिक।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा।

0: मिसाल वजों दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदों तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरां ते उपलब्ध है, अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जां ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
1: दिन भर दे कम्मां कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानूं चाहे जिथे भी लै जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसीं अपने फोन तों ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, ओह वी वधिया रेटां ते घट फीसां नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो

0: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम न उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई-ग्रिड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा, विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा अधिक।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
7: दिवाली ले वुलवर्थ्स ते हर हफ्ते मिलन वाले शानदार ऑफर्स देखो। मिसाल वजो दावत बासमती राइस एवरीडे गोल्ड 5 किलो हुन सिर्फ $12.50 दा है, मतलब $2.35 दी बचत। ए खास ऑफर 20 अक्टूबर तक जदो तक स्टॉक रहंदा है चुनिंदा स्टोरा पे उपलब्ध है। अते हो सकता है कि ए हर स्टोर ते जा ऑनलाइन ते ना मिले, इस करके जल्दी करो।
0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे आपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
8: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
9: समोसे तैयार,
10: तैयार।
9: पकौड़े,
10: तैयार।
9: चटनी, अरे चटनी तो है ही नहीं।
10: नो चटनी नो पार्टी।
11: इस दिवाली सेलिब्रेशन बनाइए खास सबरीनी चटनीस के साथ। सबरीनी, वही स्वाद, वही भरोसा। आज ही अपने नजदीकी इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सबरीनी घर ले आइए। सबरीनी चटनीस, उंगलियां चाटते रह जाओगे। यम्मी,
10: नो चटनी नो पार्टी।
12: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, थोड़े घर बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2 फोल्ड लेंडिंग।
13: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
14: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
13: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
15: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजरबा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: क्या आप सोलर की सर्विसिंग के लिए फोन करने के बजाय घर में आग लगने का जोखिम उठाएंगे? अपने सोलर पैनल्स को अच्छी स्थिति में रखकर आप बिजली के कारण घर में आग लगने के खतरे को टाल सकेंगे तथा और भी अधिक प्रभावशाली सिस्टम के लाभों का आनंद उठाएंगे। इसलिए अगर आपके घर में 2 साल या उससे भी पहले से सोलर सिस्टम इंस्टॉल है तो जोखिम ना उठाएं, सोलर सुरक्षित रहें। लाइसेंस धारक ई ग्रेड इलेक्ट्रीशियन से अपने सोलर की सर्विसिंग करवाएं और अधिक जानने के लिए energysafe.vic.gov.au पर जाएं। एनर्जी सेफ हमेशा, विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा अधिक।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना, 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
6: की चाहिदा,

0: क्या बात है, डन।
1: ओ माय गॉड, इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। पर मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रही, मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रही कि एनी फास्ट ड्राइव कदे भी करनी है। नो नो नो,
2: तुसी भी ना करया करो, तुसी एक बारी कर लो, प्रॉमिस करो सारेयां नु।
1: नहीं बस उदो बाद एक बारी फिर 130 ते कीती सी, फिर ओ हले खून वाले मार रहा सीगा ना, फिर मास्टरी हाथ काट के कट के हाथ जोड़ के कहती भैने
2: बस तू शांत हो जा,
1: तू शांत हो जा, तू अपनी लिमिट ते चल।
2: गुड आइडिया। ते जी किन्ने सवाल होए सके? 6
1: जी।
2: छे ते अगला सवाल है थोड़े पास से कि उसकी सिस्टर भी एक्टर है?
1: नोप
2: जी, उसकी सिस्टर एक्टर नहीं है। ते अगला सवाल थोड़े पास से आ रहा है कि उसके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री च ने?
1: नोप
2: यार। लाल जी ने भी गर्मिया विच मज धुप्पे बन्नी रखी। कहिंदे लाल जी ने भी गर्मिया च मज धुप्पे बन्नी रखी, इस करके मज सुक्का दुध देन लग पई। वेरी गुड। अच्छा साडे कोल इक आंसर आ चुका पर आपां ऑब्वियसली है ना हजे नहीं आंसर करांगे। अपने मैं सारे दोबारा दस दवा, फिर बाद चो लास्ट सवाल लवेंगे एंड दैन आप जी गुंजला खोलेंगे। हजे तक सू बस यही पता है कि एक फीमेल एक्ट्रेस जो जिंदा, जो सिर्फ 90s काम करती सी, उस तो बाद उन्हें काम नहीं किया,
1: सिर्फ
2: नहीं पर 90s काम जरूर करती सी, हूँ नहीं करती। एक क्लू आया नोनिया जी वालों की अज भी बेचारी कोशिश कर रही है किसी तरीके अपना नाम बनाने लई, पर उन्ना है नहीं एंड मैरिड है, पर बच्चे जिहड़े भी ने वो फिल्म इंडस्ट्री दे नहीं। जे कोई भैन भरा है उन्होंने तो वह भी कोई फिल्म इंडस्ट्री च नहीं, नहीं। तो इको सवाल ऐसे कि वह बॉन्ड ने मुंबई दे, तो फिर वह मुंबई के बॉन्ड भी नहीं ने। तो यह है जी थोड़े सारे सारे सवाल दे जवाब। हूँ असं वेख रहे हैं जी कि थोड़े कोल अगों फिर कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कि मैं फिर अगे बता। बाकी तुम सानू कॉल करना बई, क्योंकि अगले सैगमेंट असी थोड़े नाल खुला अखाड़ा लाना, आप गल्ला बातें करनी है हुम हुमा के। 044-717-1674 कॉलां करो सानू, तुसी गाने सुनाओ सानू, कवितावां सुनाओ सानू, जो मर्जी सुनाओ, अपना बेस्ट पार्ट ऑफ द वीक वीक सुनी जो मर्जी। ये नहीं बाद चो बंदा गुस्सा करना शुरू कर दे, ये ना प्लीज गाइस प्लीज आ ना करो है। ते बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है। लास्ट सवाल आ गया जी, लास्ट सवाल 814 वाले भुल्लर साहब पुछदे ने कि उसका हसबेंड जेड़ा भी है ओहो की फिल्मा च काम करदा?
1: नोप।
2: चलो जी, हसबेंड फिल्मा च काम नहीं करदा।
1: अच्छा थानू एक क्लू,
2: एक अच्छा एक ऑनररी क्वेश्चन ऐड करा लो ना, एक
1: क्लू तो ले लो।
2: अच्छा चलो क्लू दे दो।
1: उना ओ शी सच अ गुड हार्टेड पर्सन, उना नु बहुत बड़ी विरासत मिली सीगी। ऑलराइट, ते उन्होंने कहा नहीं ये मेरी नहीं अर्न की, मैं नहीं लूंगी।
2: अच्छा, ये वैसे मैं संजय दत्त का तो पता है ये वाला केस, पर मैनू आ एक्ट्रेस कोई माइंड से तो संजय दत्त का पता?
1: यस यस,
2: है ना कि वो एक उन्होंने फैन सी, वो 75-70 crore रुपए उन्होंने ना कर गई।
1: यस,
2: बट देन ही वाज काइंड एनफ कि उन्होंने कहा कि भाई मैं फैमिली फूमली लभी, तो उन्होंने कहा कि थोड़े हवाले है। क्या बात है, असीं फिल्मां फुल्मां चल जाने यार, है ना।
1: यस,
2: पर खैर एक भी फिर कोई इधर सवाल मैं ऐड नहीं कर सकता है। चलो एक ऑनररी क्वेश्चन थानू मैं वैसे पा ही दिना। नवी कंबोज जी पूछते ने नहीं, इस बारी थोड़ा बेटर सवाल है। एक्चुअली थोड़ा भुलेखा खा गया क्योंकि मैं कह चुका है बॉलीवुड है, शायद हॉलीवुड से चल भी पैंदा, पर मैं पूछ लैंदा कि तुसीं पुछया भाई जी, कहिंदे कि भला यह हीरोइन बंदा है?
1: Very tough question,
2: very tough
1: to
2: question,
1: very
2: to
1: tough
2: ask
1: question
2: though.
1: To answer. Well, उन्हें answer तो देना पड़ना है।
2: जी देना तो पड़ेगा।
1: नवी कंबोज जी, तुसी ना बहुत परेशानी च पा देने हो।
2: Very naughty, very naughty.
1: एड़े hard question ना करया करो, मैं तो बजारतां तो डर लग जांदा है।
2: सही गल है।
1: ਉਹ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ
2: ਨੇ, ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ।
1: ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੰਦਾ।
2: ਬੰਦਾ
1: ਆਪਣੇ ਨਾ ਡਿੰਪਲਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ।
2: ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
1: ਦਿੱਤਾ
2: ਗੁੱਡ ਹੈ,
1: ਗੁੱਡ ਆ।
2: ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗਿਣਾਂਗਾ 10, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੀ ਕਰੂੰ,
1: ਕਿਆ ਹੀ ਕਰੂੰ,
2: ਕਿਆ ਹੀ ਕਰੂੰ,
1: ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ
2: ਯਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ।
1: ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼,
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
1: ਯੈਸ।
2: ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 586 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ

0: मनिंदर भैन जी ने पहले मनीषा कोराला, पहले उन्होंने कहा उर्मिला, फिर उन्होंने कहा मनीषा कोराला, उन्होंने कहा प्रीति जिंटा, उन्होंने वालों मैं नम्रता शिरोडकर ऐड कर देना, ठीक है, रवीना टंडन भी ऐड कर देना, कोई ना कोई तो सही होएगा. वेल प्लेड भैन जी, वेरी गुड. सुखविंदर जी कहते ने आयशा जुलका, ठीक है. गुरप्रीत सिंह सिद्धू जी कहते ने कि उन्होंने लगता है कि ये हैगी है जी माधुरी दीक्षित,
1: माधुरी डिस्की,
0: हाँ डिस्की. अच्छा, उन्होंने वैसे जो दीक्षित लिखा वो लिखा उन्होंने थोड़ा इस तरह ही है, दीक्षित करके इस तरह करके लिखा. तो रचना आरजा जी, तो हाँ रचना आरजा जी ने भी जो ऐड किया वो अंदर उन्होंने कहा है कि प्रीति जिंटा. एक्चुअली जो तुम एंड वाला दिता लगता हर किसी प्रीति जिंटा ही है, इज इट राइट?
1: It's right.
0: Aye, Preeti Zinta, my favorite actress.
1: Ah, yes. She's cute. Shimla, okay. They born ne, you know?
0: Haan, born in Shimla.
1: Born in Shimla. She's cute, cute girl. And the ek masoomiyat hai na face te. Woh hale tak bhi unhi hai.
0: हाँ, नहीं उनते फिल्म करनी है, शुरू करती है दोबारा
1: ये, बट नॉट उनिया ओनी ना, ये
0: उनिया नहीं.
1: तो देखो भाई गंजी खुरकू जद आ जांदा ना, थोड़ा जे मैं बीच ट्रिक भी करना हुंदा है.
0: तो एक मिनट, उन्हां नु केड़ी चीज विरासत च मिली जेड़ी
1: उन्हां नु? आई फॉरगॉट, कोई डायरेक्टर सीगे हुणी रीसेंट, बहुत पुरानी गल नहीं है. उन्हां नु उन्होंने अपने मरण तो बाद उन्होंने बहुत बड़ी आई थिंक मल्टी करोड़ां दे विच जायदाद सीगी जिहड़ी ओह सिर्फ और सिर्फ प्रीति जिंटा दे नां करके गए जान टाइम, ते प्रीति जिंटा ने उन्हां नूं लैण तों मना करता.
0: दैट इज
1: हर्ट, मेरे स्लिप हो गया माइंड चों,
0: पर कोई ना कोई तो
1: ये कोई किसी ने दस देना अपने, बहुत हमारे जसूस चारों तरफ फैले हुए हैं.
0: अभी गल ठीक है,
1: यस है?
0: पर नाइस हो गया. अज मैं मजा आया, बाकी मैनु भी बड़ा औखा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना?
1: Alrighty.
0: पर गुड गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नोनिया पेने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू.
1: थैंक यू बाजी, थैंक यू.
0: हां जी, राज खुराना जी कहंदे कि 600 करोड़ की प्रॉपर्टी लैन तो इनकार कर दिता जी उन्होंने.
1: हां जी,
0: क्या बात है, सानू ही कोई पूछ लैंदा भाई.
1: तुसी प्रीति जिंटा नहीं हो ना,
0: साडी ते ना करा के दिखाओ एक बारी, फेर मन्नी है.
1: नहीं थोड़ी गल्लां च टोए नहीं ना पैंदे.
0: ओहो,
1: दाढ़ी मंडवा के रखिया करो ताकि टोए दिखण.
0: वो तो फिर मेरे ख्याल ना जेड़े मेरे सच्ची बनते मैं वही ना मिलन, दाढ़ी नहीं मैं कटा सकता भाई, सॉरी. ये ना करो. अच्छा, उन्होंने लिखा जी, क्या बात है, थैंक यू जी, थैंक यू. उन्होंने लिखा कि अहंदर अहंदर अमरोही
1: ये
0: उन्होंने अपनी बेटी मानते सी,
1: यस,
0: पर प्रीति जिंटा ने मना कर दिता.
1: ये, ये, ये,
0: बात क्या बात है, ग्रेट नॉलेज राज साहब, थैंक यू सो मच. बाकी अज मैं थोड़ा उदा दस दवा कि बच्चे थोड़ा पिज्जा उड़ीकते हुए गए है. जेड़ा तुसी कल सानू प्रॉमिस कीता सी, चलो कोई गल नहीं, हो जांदा है भाई.
1: सानू नहर वाले पुल ते बिठा के खोरे राजी किथे खो गए,
0: माड़ी गल है भाई, माड़ी गल. सानू
1: पीजियां दलारा लाके
0: किथे चले गए,
1: किथे चले गए,
0: माड़ी गल है. ते हुन साडे कोले कॉल भी आ चुकी है, पर मैं चाहना कि ना एक छोटी जी ब्रेक लैके ना फ्रेश एंड फ्रेश होके फिर आके सुनांगे. तो पहले ब्रेक तो जाने तो पहला आपां थोड़े बहुत थोड़े मैसेजेस पढ़ लैने हैं.
1: यस प्लीज,
0: है ना. तो फिर उस तो बाद वधिया जे एक गाने दे नाल थानू बाय बाय करांगे, फिर नाल ही छेती छेती आऊँगा, प्रोमिस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. तो सुखविंदर भैन जी सानू भेजदे ने मैसेज, मैं थक जानी हाँ, मैं अपने आप तो ही कई बार अक जानी हाँ, कि मंजिल तो बहुत दूर है अजे, वेखो कित्थे तक जानी हाँ, लखां च होणगियां गल्लां जां हो कख जानी हाँ, हर रोज़ मजबूत दिखदे दिखदे मैं थक जानी हाँ. वाह वाह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू साडे नाल सांझा करन लई. ते उधरों जी मैसेज आया जी सिमरन जी दा, कहिंदे ने माय बॉय फ्राइडे दे दिन दी शुरुआत ही शराबियां दी इन्नी ला पा. मैं नहीं खेड़दा, से सॉरी टू ऑल रिस्पेक्टेड शराबी. देखो देखो सब माइंडसेट है. मैं अपने वालों कहना है कि देखो शराबी लोग किन्ने जाबाज खिडारी हुंदे ने.
1: जाबाज
0: टेडी रूजवेल्ट ने कहा कि देखो जेड़ी वाह वाही है ना वो उस बंदे दी नहीं है जेड़ा साइड ते बैठ के ताड़ियां मार रहा है या क्रिटिक बन रहा है, जेड़ा अखाड़े च खड़ा पया है वो जित रहा हार रहा गल बात दी है,
1: जेड़ा नाली च डिग रहा है, जेड़ा कर दिया नहीं जुत्तियां खा रहा है, ये गाला खा रहा है,
0: वो मेन है गाइस. ठीक है, तुसी आपने घबराना नहीं है. ठीक है ना. तो रिचर्ड जी पूरे 25,000 साल बाद मैसेज कर रहे हैं कि ममता कुलकर्णी, एदा हुण मैं की मैं करा, मैं एदा की करा.

0: ममता कुलकर्णी हाँ जी ठीक होंगे जी, मैं जानता नहीं पर्सनली. यू नो वॉट फन फैक्ट, प्रीति जिंटा ने मैनू पानी पिलाया हुआ.
1: अच्छा.
0: हाँ असी किंग्स इलेवन पंजाब का मैच देखने गए थे. सो वो जो इनिंग खत्म होंगी ना, सो वो पानी की बोतल सुटते हैं, टीशर्ट सुटते, फिर आप कह तो सकते ना यार असी तो बहुत गर्मी जे बैठे से. प्रीति जिंटा ने कहा यार नहीं यार मुंडे नूं पानी पिया दिए. वेरी नाइस.
1: कहते सज्जना ने फुल मारिया साडी रूह अमरंग तक रोई. कहते यार इनी रोण वाली कहड़ी गल सी. कहिंदा गल सिर्फ इनी सी कि सज्जना ने गमले समेत कढ मारिया सी. पानी पिलाया तो ऐं गया जिदां पता नहीं किहने प्यार दा ग्लास पेश कीता होगा. ऐं नहीं पता मत्थे च बोतल मारी.
0: वैसे गल तो सही है, फाहा जी वड़ रही थी. मेरी इनी अच्छी मेमोरी क्यों खराब कर रहे हो तुसीं? हां मिट्टी से भी प्यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख, पहचान हो तेरी हटकर भीड़ में कलाकारी रख, पल भर ये जोश जवानी का बुढ़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबके मिलता नहीं फिर भी जुबां प्यारी रख. जी बहुत बढ़िया. मैं लास्ट लाइन बड़ी बढ़िया. आजकल बड़ी जरूरत है लोगों को,
1: वेरी वेरी जरूरत, वेरी जरूरत.
0: लोग बड़े ना इरिटेटेड जे फील होते हैं. मैं देखा कि एवरीवन इज वेरी मच इरिटेटेड. तुसी बिल्कुल नहीं होना. तो लास्ट मैसेज जान तो पहला जिस बंदे तो हमेशा मैं डरदा कि ये मैसेज करेंगे
1: रियासत दे पैरी.
0: नहीं नहीं नहीं वो तो चलो कैंट काम कर दी ने. इन्होंने जी मैसेज भेजा जस अमरजीत जी ने कि अज कहंदे कि जी नी टू शटर या अंडरटेकर दा नहीं, अज ट्रंप का ही कोई पंजाबी गाना ला दो.
1: मित्रा का चलिया ट्रक नी,
0: नहीं
1: चुप करके बह जा.
0: नहीं नहीं नहीं गाइस ट्रंप का ही गाना सुनाऊंगा थानू चीमा वाई दी आवाज़ च. ट्रंप तुसी सुन रहे हो, मैं छोटी जी ब्रेक लेके आया, सुनते रहो रेडियो 1674 AM.

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा है,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
0: समोसे तैयार,
4: तैयार।
0: पकौड़े
4: तैयार।
0: चटनी, अरे चटनी तो है ही नहीं।
4: नो चटनी नो पार्टी।
0: इस दिवाली सेलिब्रेशन बनाइए खास सबरीनी चटनीस के साथ। सबरीनी, वही स्वाद वही भरोसा। आज ही अपने नजदीकी इंडियन ग्रोसरी स्टोर से सबरीनी घर ले आइए। सबरीनी चटनीस, उंगलियां चाटते रह जाओगे। यम्मी,
4: नो चटनी नो पार्टी।
5: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें, जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
6: किथे वज गई तेरी गड्डी?
7: गड्डी तां ठीक होजू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
6: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा,
8: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरीबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
9: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
10: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुग निना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।
11: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजुर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।